असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद

मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान है कट कट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते

का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केह बुद्ध सजा प्रथम।

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।